प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

0: प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of

शिखर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मन पसंद शो घर आंगन के साथ और खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मीठा सा प्यारा सा गीत आपकी नजर।

दोस्तों, अभी हमने बात की कि हम बहुत सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, तो लीजिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों के बीच शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना है। आज की दुनिया में जहाँ अलग अलग विचार, संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ समझ और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। संवाद से ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और पूर्वाग्रहों को दूर कर सकते हैं, और हाँ, एक बेहतर शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी संकल्प करें कि हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे।

बात कर रहे हैं बहुत सारी जानकारियों की, तो जानकारी से जुड़े रहिए और सुनते रहिए घर आंगन का शो, यानी मेरे साथ सिमरन कौर के साथ। और अब बात करते हैं योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, योग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये योग। और ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक समग्र विज्ञान है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें शांति, संतुलन और ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक रूप से योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, रक्त संचार सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। नियमित योगासन से वजन नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर संतुलित रहता है। मानसिक रूप से योग तनाव और चिंता को कम करता है। प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। भावात्मक रूप से हम ज्यादा संतुलित और सकारात्मक रहने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से योग हमें अपने आप से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सुख दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। योग के माध्यम से हम अपनी सच्ची प्रकृति को जान पाते हैं। योग कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। बस 20-30 मिनट रोज देने से आपका पूरा दिन जो है वो बदल सकता है। तो आइए आज से ही योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ खुशहाल जीवन जिएं।

और अब बात करते हैं पद्म विभूषण से अलंकृत डॉक्टर एन राजम की। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया डॉक्टर एन राजम, जो कि देश की मशहूर वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

प्रसिद्ध वायलिन वादिका हैं। उनका जन्म 1938 में हुआ था और मात्र 3-4 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र तक वो प्रोफेशनल परफॉर्मर बन चुकी थी। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग यानी ख्याल गायकी की शैली को बहुत खूबसूरती से अपनाया। इससे पहले वायलिन को मुख्य रूप से साथ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे सोलो

उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर एन राजम की उम्र अब 88 साल के आसपास, लेकिन उनका योगदान आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है।

और दोस्तों बात करते हैं खुशी जीवन के लिए बेहद जरूरी है, यानी हंसने का हुनर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में ऐसी परेशानियों से अधिकांश लोग घिरे हुए रहते हैं। ये स्थिति हैप्पी हार्मोन डोपामाइन की कमी के कारण होती है। और न्यूरो साइंटिस्ट ने डोपामाइन रिसेट करने का तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप 24 घंटे में ही असर देख सकते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स पर गहरा असर होता है। धीरे धीरे आपकी मानसिक सेहत में सुधार होने लगता है। और आज के समय में लोगों को उदासी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्मार्टफोन और स्क्रीन टाइम। हालांकि लोगों को लगता है इससे उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन असल में जिंदगी का सुकून छीन रहे हैं। अब लोग खाने से लेकर बिस्तर तक, लेटने के दौरान, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मोबाइल यूज करते हैं। सोशल मीडिया के साथ ही व्हाट्सएप, ईमेल पर इस समय नजरें रहती हैं कि जो कि सेहत पर बुरा असर डालती हैं। खाना खाते समय किसी भी प्रकार की स्क्रीन ना देखें और इसमें आपके दिन भर के मील्स भी शामिल हैं। हालांकि इसमें कुछ लोगों को परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी टीवी मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और खास तौर पर डोपामाइन को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। यानी सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन आदतों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ढेर सारी खुशी मिले। जैसे अपने दोस्तों से मिलते रहें और खास तौर पर उनसे बातचीत करें, क्योंकि उनके सुख दुख में शामिल हों। तो जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग बातें साझा करते हैं, तो एक दूसरे की भावनाएं उनसे जुड़ती हैं। अपने शौक को पूरा ध्यान दें, जैसे किसी को संगीत का शौक है, घूमने का है, पेंटिंग करने का है, उसे भी आप बनाए रखें। और इसके अलावा कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करें, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि समाज में मिलकर रहने की आदत भी आपको खुशी प्रदान करेगी। और इसके अलावा आप घर से बाहर निकलकर ताजी धूप लें, हवा का एहसास करें, इससे डोपामाइन रिसेट होने में मदद मिलती है। तो इन सब बातों पर आप विचार करें। और इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सोने से पहले कभी भी स्क्रीन यूज नहीं करें, क्योंकि इससे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड शामिल हैं। आप सोने से पहले गहरी सांस लें और बिना किसी चिंता या विचार के सोने की कोशिश करें, तब आपको लगेगा कि आप खुशी के एहसास की तरफ बढ़ रहे हैं।

की तरह छाइए, लेकिन जरा आंख बंद करके सोचिए, सुबह चिड़ियों की चहचहाट, साफ हवा, ठंडा पानी अच्छा लगता है ना। पर आज हकीकत क्या है, गर्मी बढ़ रही है, नदियां सूख रही हैं। और दोस्तों, पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, खाना और जीवन, लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसे? रोज पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं और कार्बन बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें कुछ आदतों को सुधारना पड़ेगा। घर से निकले तो कपड़े का थैला ले लीजिए, पॉलिथीन को ना कहिए, और एक थैला साल भर 300 पॉलिथीन बचाता है। नल खुला छोड़कर ब्रश नहीं करिए, पानी की एक एक बूंद कीमती है। बिजली का स्विच ऑफ करना मत भूलिए, एसी 24 की जगह 26 पर चलाइए, बिजली भी बचेगी और बिल भी। गाड़ी रोज निकालने की जगह हफ्ते में एक दिन साइकिल या पैदल चलाइए, और पैदल से चलिए, और सेहत भी बनेगी, धुआं भी कम होगा। और हाँ, गर्मी में एक पेड़ जरूर लगाएं, नीम, पीपल, जामुन, जो मिले। पेड़ एसी से बेहतर ठंडक देता है, और वो भी मुफ्त में। तो याद रखिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर टिका है। आइए आज से ही पर्यावरण की रक्षा करें, और एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा

क्योंकि धरती की बस यही पुकार, हरा भरा हो संसार, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं और चलिए पर्यावरण के ही अनुकूल।

लिए अपनी सहेलियों के लिए जो कि घर आंगन सुन रही हैं, उनकी एक अच्छी न्यूज उनको सुनाना चाहते हैं। बड़ी देर से सोच रही हूँ कब सुनाऊं कब सुनाऊं, तो चलिए सुनाती हूँ आपको अच्छी सी न्यूज एक और कि महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के लिए डीटीसी की अपील शुरू कर दी है। दिल्ली में 2.35 लाख महिलाओं ने अब तक कार्ड नहीं बनवाया है और डीटीसी की अपील है कि वो जल्द आवेदन कर ले, क्योंकि दिल्ली की बसों मुफ्त यात्रा की सुविधा लाभ उठाने के लिए 2,35,000 महिलाओं का पिंक कार्ड बनने के लिए अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 5,63,000 तक ही पिंक कार्ड बनवाने वाली महिलाओं की संख्या पहुंच चुकी है और एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 8 लाख से करीब महिलाएं प्रतिदिन बसों में सफर करती हैं, जो अपने घर से काम पर जाने के लिए बस पकड़ती हैं, घर लौटने के लिए फिर बसों का उपयोग करती हैं। तो ऐसे में 14 लाख से लेकर 16 लाख तक प्रतिदिन पिंक टिकट का उपयोग होता है और महिलाओं को पूरी तरह से पिंक पास बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद ही पिंक टिकट बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले डीटीसी के पास केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन मुफ्त यात्रा के लिए अनिवार्य इस कार्ड को बनवाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया भी है। हालांकि अब अधिकांश पात्र महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं, जिससे केंद्रों पर भीड़ कम होने लगी है, लेकिन डीटीसी प्रशासन ने उन महिलाओं से अनुरोध किया है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। तो पिंक कार्ड के बिना महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा और ये स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना कार्ड के यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट लेना अनिवार्य होगा। इसीलिए असुविधा से बचने के लिए जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

हम यही कहना चाहते कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें खुश, स्वस्थ और मस्त। सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग

0: करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने दिया है, इस भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने दिया है, इस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, यदि आप हमसे मेल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। पता है ipradiodelhi@gmail.com। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म मशहूर गुजराती उपन्यासकार गोवर्धन माधवम त्रिपाठी के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन किया था गोविंद सरैया ने और मुख्य भूमिकाओं में थी नूतन, जिन्होंने कुमुद का किरदार निभाया, और अभिनेता मनीष यानी सरस्वती चंद के रोल में थे। ये फिल्म एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि त्याग, संवेदना और भारतीय संस्कारों का एक खूबसूरत दस्तावेज बन गई। कहानी है सरस्वती चंद और कुमुद की, दो लोग जिनकी सगाई होती है और शुरू होती है प्रेम।

मुकेश की आवाज में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना और अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। ये ईमेल हमें मिला है नीतीश कुमार तनुजा देवांगन का, और आपके साथ हैं ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन पाहंदा पालारी छत्तीसगढ़ से। और ये लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद बोला है। तो तनुजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं। आप हैं फाजिल्का पंजाब से, भूषण गेड़ा, विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा। और ये मैसेज मिला है गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन से। आप ही के साथ हैं शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। और ये मैसेज हमें मिला है अजीत भावसार जी का, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म सरस्वती चंद के हीरो मनीष, जिनका असली नाम आशीष कुमार था, वे बंगाली भाषा बोलते थे, हिंदी नहीं आती थी। पूरी फिल्म में उनके डायलॉग डब किए गए थे। डबिंग करने वाले विविध भारतीय रेडियो के आरजे ब्रिजभूषण साहनी ने अपनी आवाज दी थी। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है अजीत जी कि आपने ये जानकारी, हमें भी नहीं मालूम थी, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज हमें मिला है संजय साहू पोटिया कला से, और ये लिख रहे हैं कि सरस्वती चंद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली और पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हरिका और हार्दिक वंश बत्ता का। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, कुलमंत कौर, मनु, और इन्होंने अपनी जगह का नाम बताया है पटियाला से। आप हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कुमुद और सरस्वती चंद की प्रेम कहानी शुरू होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों का मिलन अधूरा रह जाता है। कुमुद का विवाह कहीं और हो जाता है और यहीं से शुरू होती है भावनाओं, जिम्मेदारियों और त्याग की यात्रा। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक मूल्यों का आईना थी। कुमुद का विवाह एक अमीर प्रमोद यानी रमेश देव से हो जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रमोद एक अय्याश और शराबी है, फिर भी वो मुस्कुराकर अपना गम छुपाने की

आकाशवाणी दिल्ली के इन प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है सरस्वती चंद और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। और अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है हीरामणि वर्मा का दत्ते की भाटापारा से। आपने संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से, वडेंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, भोपालगढ़ राजस्थान से। आपके साथ हैं कपिल छिपा, पूजा परिहार। और इन्होंने लिखा है कि इसमें अभिनय किया था नूतन मनीष ने। गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीतों को आवाज दी थी लता मंगेशकर, मुकेश और मुबारक बेगम ने। आपने इस फिल्म के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए और नगमे भी सुनाए। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए इन्होंने हमें धन्यवाद बोला है। तो धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। और ये मैसेज मिला है गांव नथाना पंजाब से। भेजने वाले हैं हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी और सीता और गीता। आप हैं डीबी राणा, नेहरू विहार दिल्ली से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। और ये मैसेज हमें मिला है प्रेम सागर शुभलता का फ्रॉम अमृतसर से। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और हमसे जुड़े हैं जलालाबाद बेस से पूनम और सुरेश। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। नलेश्वर नगर नरबेल महाराज से हमसे जुड़े हैं पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरेकर। तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं आगे। अगर सरस्वती चंद की बात है और संगीत का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे थे इंदिवर ने। इस फिल्म के संगीत को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला और वो गीत चंदन सा बदन फूल तुम्हें भेजा है जैसे गीत

इस गीत से जुड़ा ही एक बहुत ही अच्छा सा हमें मैसेज गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से भेजा है पब्लिश पवार जी ने, और लिख रहे हैं कि बिना शब्दों वाला अनोखा प्रेम पत्र। फिल्म का एक दृश्य और इसमें इस्तेमाल किया गया तरीका उस दौर में बहुत लोकप्रिय और अनोखा माना गया था। फिल्म में जब सरस्वती चंद कुमुद को अपना पहला प्रेम पत्र भेजता है तो वो कागज पूरी तरह से कोरा होता है जिसके अंदर बस एक फूल लिपटा होता है। ये इस बात का प्रतीक था कि उनका प्यार शब्दों का मोहताज नहीं और वो फूल भेजने वाले के दिल को दर्शाता है। तो बहुत ही सुंदर सा मैसेज बबलेश जी ने भेजा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज सुधार का, और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप हैं दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता देवी और रुद्र वर्मा। नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। आप हैं नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनू प्रसाद जाधव। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनदास लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। और आप हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता कौर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को इतने दिल से सुना। और इस फिल्म को केवल दर्शकों का प्यार नहीं मिला बल्कि सम्मान भी मिला। इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए कल्याण जी आनंद जी को पुरस्कार मिला और श्वेत श्याम छायांकन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड एस अली राजा को मिला। कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी और अभिनय सबने पसंद किया। कुछ फिल्में समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे यादों का

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी अर्चना गोयल को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म की कहानी, उसके संगीत और अनकही किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब से रोज दिन में 3 बजे से आप सुनेंगे गोल्डन एरा के पुराने गीत, तो सुनना ना भूलिएगा। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है, आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संदेश बुलेटिन नाल शर्मा, पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति दे संबंध विच अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए दी नवी दिल्ली च बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी। सरकार वल्लों राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट दी तजवीज़। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश च सीएनजी दी कोई कमी नहीं है। अते विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर अज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की आज नवी दिल्ली च मीटिंग होगी। इस विच सरकार दे 12 साल पूरे होण अते भारत दे सब तो लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री वजों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चोटी के नेता ते एनडीए गठजोड़ दियां सारियां भाईवाल पार्टियां के नेतावां दी मीटिंग च शामिल होने की उम्मीद है। सारे 22 एनडीए शासित राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्रियां सारियां गठजोड़ पार्टियां के नेता भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग विच वख-वख राष्ट्रीय विकास प्रोग्रामा, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामा अते 2047 के विकसित भारत की सरकार के दृष्टिकोण ते चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लगातार 2 वार सेवा निभाउण वाले सब तो लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनन दी वधाई दित्ती है। नवी दिल्ली च कैबिनेट मीटिंग दौरान मैंबरां ने प्रधानमंत्री मोदी प्रति अपना सत्कार जाहिर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री नरेंद्र मोदी नूं देश दे सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन दी वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास एक मौका लोगों के उन्हों की अगवाई च अटुट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल दौरान शासन, आर्थिक खुशहाली ते समाजिक तब्दीली के खेतरां च तरक्की हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दियां व्यापक भलाई पहलकदमियां जमीनी पद्धर ते लोगों तक लाभ पहुंचा रही ने। उधर विदेश मंत्री डॉ. अजय शंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

0: खेतों को। इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश च सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरां नूं पाइप राही कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई वधा रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनैक्शनां नूं पीएनजी कनैक्शनां च बदलन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला के आलमी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ने। श्री पुरी ने कहा कि सरकार अजिहीआं गतिविधियां खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर आज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड दे दो दिन सरकारी दौरे ते ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि बुल्गारिया की अपनी यात्रा दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के चोटी दे नेतावां ते विदेश मंत्री नाल मुलाकात करनगे अते विचार वटांदरा करनगे। अफगानिस्तान के कोनार फोर्ट अते पतिका प्रांतां विच पाकिस्तानी फौज के हवाई हमलों में 13 लोग मारे गए जिन्हां विचों ज्यादातर बच्चे ने। तालिबान के बुलारे ज़ेहुल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करदिया कहा कि इसने कल रात नागरिकां दे घरां नूं निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर अफगान हवाई खेतर की उलंघना की थी, इस नूं मानवतावादी अपराध ते हमलावर कार्रवाई करार दिता है। दक्षिणी फिलीपींस विच बचाव टीमां ने कल नुकसानियां इमारतां की तलाशी ली तां जो यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति इन्हां दे अंदर फसिया ना होवे। एक दिन पहला 7.8 तीव्रता वाले भूचाल च 37 लोग मारे गए, लगभग 500 जख्मी हुए ने, 32,000 तो वध लोग बेघर हो गए ने। दहाकियां च देश च आए सब तो शक्तिशाली भूचाल चो एक बारे अधिकारियों ने कहा कि 4 लोग अजे भी लापता ने, जबकि कुछ टीमां संभावी बचे हुए पीड़ितों लिए नुकसानियां इमारतों की तलाशी लै रही ने। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री के सब तो लंबे समय कार्यकाल की प्राप्ति के सिलसिले च अज राष्ट्र लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली च बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला जारी। सरकार वालों राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों लिए 95,692 करोड़ के अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज। विदेश मंत्री डॉ अजय शंकर आज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड के 2 दिन सरकारी दौरे ते। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4,398 दिन का था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4,399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। मरकजी काबीना ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत के तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। आज कौमी राजधानी में मरकजी काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना के मेम्बरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तला-ओ नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी दे रहे हैं।
3: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे।

0: भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वजरा अमित शाह, डॉ एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वजरा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके आजाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुर्बत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम ने खवातीन को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने शानदार महारत, इत्मीनान और पुख्ता आजम के साथ मुल्क की रहनुमाई की है और मुल्क का निजाम चलाया है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने और विकसित भारत के नजरिए की तकमील का अहद कर रखा है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजरा आला और नायब वजरा आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान की कुनार, खोस्त और पक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारहियत की हरकत करार दिया। गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुल्क में सीएनजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस पीएनजी की सप्लाई का दायरा बढ़ा रही है और एलपीजी कनेक्शन को पीएनजी कनेक्शन में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू पीएनजी कनेक्शन।
1: ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अब नए हुर्मुज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खित्ते में उर्दुन में अमरीकी फौज के एक ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक आज नए हुर्मुज में बंदरगाही शहर सिरिक और किस्म जजीरे पर

0: हमला किया गया है। उधर उर्दुन के मुसलह अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ से ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। उर्दुन की फौज ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए ईरान के इलाके से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया। अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। यह मिशन अगले साल के अवाखिर में अंजाम दिए जाने का प्रोग्राम है। इसके तहत पहली मरतबा मदार में स्पेस एक्स और ब्लू ऑर्गिन से चांद पर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। दिफाई साजो सामान की खरीदारी दिफा के शोबे में महारत के लिए इख्तरात और एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए जांच के मराहिल से मुतालिक एक वर्कशॉप कल नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। दिफाई इकोसिस्टम में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की शमूलियत को बढ़ाने और इसके बारे में बेदारी पैदा करना इस तकरीब का मकसद है। इंसानी हकूक की अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अवी तंजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरान एहतजाज पर पुरतशद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुकाम की सख्त नुकताचीनी की है। मजकूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर एकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि खत्ते में इंसानी हकूक की सूरतहाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वजीर आजम की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए एनडीए की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम अज कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमरीका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 3 अमरीका के और 1 इटली का होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर

0: आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
0: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को न आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिलाकर है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलता

0: पूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Dari sekpentes, Akashwani Delhi kena National News Service program online ini nutpin medium wave kang acas Akashwani Kargil na zirin nut. Waktu pun ini metusut ngisnafet sosok kasat NCRT sponsored program yang mazat umang.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
1: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
1: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चले

0: एक और महादेश अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना?
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
1: जी,
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
1: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ।

0: जी जी अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है, ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी तीन चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा

0: पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: अच्छा अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
0: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
0: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
0: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
0: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
2: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
0: अच्छा,
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बंट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब

0: पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
1: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
0: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
0: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
1: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग,
6: उमंग। वास्पोत सत सुमसंस कसत आकाशवाणी दिल्ली कना उर्दू सर्विस प्रोग्राम ओनर लेबे तिरिलेला डांबाजत।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

0: किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। मरकजी काबीना ने अमरावती में अहमदाबाद मेट्रो और सरकारी दफातर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तोसी समेत 4,700 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का मंजूरी दे दी है। ईरान ने उर्दू में अमरीका के फौजी अड्डों और खलीज में दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। अमरीका ने ईरान के ठिकानों पर हमले करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। और फेसबुक की सरपरस्त कंपनी मेटा ने भारत में एआई पर मबनी अपना पहला डेटा सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के अहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस अहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू का दौरे हुकूमत 4,398 दिन का था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने अहदे पर अब तक 4,399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि ये तारीखी मौका उनके क्यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिकारों से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क्यादत में 25 करोड़ कुनबों को गुर्बत से बाहर निकल लाया गया है। जनाब नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वजीर आजम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने की

किशोर कुमार और शखन्ना की आवाजों में जॉनी मेरा नाम फिल्म का नगमा, नगमा निगार इंदिवर मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

0: اسی گھڑی
1: لیکن
0: سلیم
1: جو حکم مادر کرے

0: कर क्यों लाई है?
1: सारा यही होता है, वो सोती है जैसे अंगारों पर लौट रही हो। मैं सब कुछ सुनती हूँ, अकेले सुनती हूँ। आज न जाने क्यों दिल ने अकेली इस हसीयत को बर्दाश्त करने से इंकार कर दिया। सोचा कोई साथी हो, सो तुझे ले आई।
0: मादर सल्तनत

0: हमारे हौसले छूटे जा रहे हैं। बार बार जैसे कोई हमारे कानों में चीख कर कहता है कि ये मत कर जहांगीर, दुनिया तेरी मासूमियत पर न जाएगी, लोग इसे शेर अफगन के खून बहा की पहली किस्त करार देंगे।
1: तिपले आलम,
0: सोते जागते चलते फिरते हम जहां पना है क़िबला आलम है, ज़िल्ले इलाही है, लेकिन न जाने हमारा हम कहां खो गया है। बहरुल्लिसा, रुख्सत से पहले तुम्हारा बादशाह तुमसे एक गुजारिश करना चाहता है। अगर इन महलों में कहीं सलीम मिल जाए तो उससे कहना चाह, तेरा बादशाह तेरे गम में जौलीदा मुंह है, सर बजालू है, खुदा हो।

0: बरस बीत चुके मेहरुन्निसा, आज से 3 साल पहले शाही महलों का दरवाजा तेरे लुटे हुए काफले के लिए वाह हुआ था। तूने ये सब क्यों कबूल किया? क्यों आई तू यहां? कहीं भी चली जाती, किसी भी मुमलिकत में, किसी भी सहरा में, कहां चली जाती? होनी को कौन टाल सकता है? तुझे वो जश्न नौरोज याद नहीं? तू तो उसी रोज बिक चुकी थी। आज तेरे सामने तेरा असल खरीदार आया है और तू नहीं, मेरा कोई खरीदार नहीं, मैं बिकने की चीज भी नहीं। सच्चाई में यूं नहीं छुपती पगली, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। तेरी सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी इस पहाड़ जैसी जिंदगी को? शायद तेरे खुदा को भी यही मंजूर था। जिंदगी सहारों पर कौन काटता है? जिंदगी तो एक अज़्म है, एक इरादा है। क्यों किसी का दिल तोड़ रही है नादान? तेरा दिल तो टूट ही चुका है। अगर तेरी खातिर किसी को जिंदगी मिलती है तो दे दे। किसका दिल टूट रहा है? कौन जिंदगी पा रहा है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सच है। कहते कि बादशाह के दिल में आज भी तेरी मोहब्बत जवान नहीं। कहते कि पिछले 3 साल से वो तेरे होठों से निकली हुई एक हां के लिए बेकरार नहीं। अब मैं ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहती। आज से 19 साल पहले जब मैं 14 बरस की थी, तब भी एक दीवाने रमाल ने मुझे ऐसा ही ख्वाब दिखाया था। लड़कियां मुझे खींचकर उसके पास ले गई थी। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है।
1: अरे हमने कहा खान, जरा इसका हाथ भी देख लीजिए ना।
2: बिटिया, अब सूरज डूबने को है, 4 कोस मंजिल तय करके तब घर पहुंचूंगा। न घोड़ा न सवारी, अब जाने भी दो।
1: अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। अरे जल्दी करना, बड़ा आंख नहीं आते ली मेहरून।
2: लगता है सारा महल आज ही अपनी किस्मत पूछ डालेगा।
1: अरे मेहरून जल्दी कर, लाए इधर, ये लीजिए, ये रही हथेली।
2: हाथ तो बड़ा खूबसूरत है।
1: लो, ये तो हाथ ही देख कर रीझ गया।
2: ऐसी बात नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। ला बेटी, तेरा हाथ भी देख लो।

0: देहरादून में सा
1: बाप का नाम
0: मिर्जा गयास बेग।
1: सुभान तेरी कुदरत, वाह मेरे मालिक, किस्मत हो तो ऐसी।
0: अरे कुछ कहोगे भी बड़े मियाँ या यूं ही उड़ाए जाओगे?
1: इस पर चतरशाही कुर्बान होता देख रहा हूँ। बेटी मेरी बात याद रखना, एक दिन तू मलिका बनेगी, यकीनन तू मलिका बनेगी।
0: देख मेहरुन्निसा, याद कर वो अल्फाज। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है।
2: हुजूर आलिया, आपकी खिदमत में हजरत शहंशाह जहांगीर का पैगाम है।
0: पैगाम? कैसा पैगाम?
2: बादशाह आज सुपहर मुलाकात के तालिब है।
0: नहीं नहीं, खबर भेजते कि हम अलील हैं, हम न मिल सकेंगे, हम न मिल सकेंगे।
2: जो हुक्म हुजूर आलिया।
0: ये क्या कर रही है? रोक कनीजा को, रोक। कनीजा ठहर जा जरा।
2: जो हुक्म।
0: कहते हमें मंजूर है, कहते मेहरुन्निसा।
2: कनीजा

0: चार साल होने को आ रहे हैं। हमारी कुदरत और हमारा इख्तियार दोनों शल हो चुके। हमने जो चाहा हासिल किया, लेकिन महरुलसा हम तुम्हें अमृत से नहीं मोहब्बत से जीतेंगे। हम इंतजार करेंगे ताबत रहती दुनिया तक। महरुलसा हम तुम्हारी बेल्तफाती पर गमगीन नहीं। शायद हम ही अपने गुले मुराद की आबियारी में कोता अंदेश रहे। हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। कितनी लज्जत आंगी है ये सजा।
1: जहां पना कनीजा बारियाबी की इजाजत चाहते हैं।
0: खुश आमदेद, हम मुंतजर हैं।
1: हुजूर आलिया मेहरुन्निसा बेगम ने फरमाया है कि आपकी तशरीफ आपके पाए से इज्जत शरफ होगी।
0: कनीजा कोई है? कनीजा को जरूर जवाहर से मालामाल कर दिया जाए।

कर रहे हैं कनीता, तूने तो हमारे एक एक गोजू को मोतियों से कोट दिया है आज। अरे जी, ये क्या है? आज मत रोकिए हुजूर आलिया, आज कनीता को मनमानी करने की इजाजत दे दीजिए। गुलाबों का चूड़ा मुझे बालों में सवार लेने दीजिए। इतने जेवर जैसे मुझे दुल्हन बना रही हो। हुजूर तो खुद एक जेवर है, मैंने अपनी आंखों को आज तक संवरे नहीं देखा।

आकाशवाणी सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में असद भोपाली का लिखा है गीत जिसे मौसीकी सजाया है राम लक्ष्मण ने। फिल्म है मैंने प्यार किया।

در سخپنت ساکاشوانی دلی کنار دو سریسی پروگرامون لعنتی.

इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है, ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था, तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है, तब मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती। वो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है ये बात मेरे ध्यान में आई और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था और 5वीं बार इसका एस्टीमेट 12,000 करोड़ का जिसके ऊपर मैंने साइन की थी, पर मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टीमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कॉस्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। मुझे यह भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और इन सब से अनेक अड़चने जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला, मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी, हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका एक नतीजा है कि आज हम सफलता की कगार पर खड़े हैं। मुझे और इस विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो लेबर्स है, जो हमारे इसके कंसल्टेंट है, यहाँ रात दिन प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अधिकारीगण हैं और विशेष रूप से NHIDCL के MD कृष्ण कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे NHIDCL के भी टीम ने जो काम किया है वो सब अभिनंदन के लिए पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है, कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं उसमें से जो 15 से पारिस पास्कियू तक टोल एंड मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है, जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक टू लेन प्योर शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है, जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं, 6 किलोमीटर का DPR जो है वो भी अभी 15 है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूँ। लेह में टू लेन प्योर शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1,000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ, आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में टू लेन प्योर शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 किलोमीटर की मैं घोषणा करता हूँ, इसका DPR अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर

इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा, ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका DPR भी बन अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में वहां जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका DPR बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2,250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है, दिसंबर 2026 के पहले इसका भी DPR बन जाएगा। इस टनल से मनाली से लेह लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहां 10 घंटे लगते थे हम आसानी से 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग 2,00,000 करोड़ के काम लगभग कर रहे हैं, कुछ पूरे हुए कुछ चल रहे हैं। और इसमें से हाई स्पीड कॉरिडोर है 4, जिसकी कीमत 60,000 करोड़ है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर 4 लेन ये लाइफ लाइन है 16,000 करोड़ की, 250 किलोमीटर, 95% काम पूरा हुआ है, बाकी काम दिसंबर 2027 में पूरा होगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत के समय में हमको लगा कि रोड से काम चल जाएगा, पर जब जिस प्रकार की एक यहाँ की परिस्थितियां है उसमें रोड में काफी अड़चने आई, लैंडस्लाइड्स हुई, और फिर हमने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम टनल ही बनाएंगे। तो 25 टनल इस मार्ग पर हम बना रहे हैं और उसमें से 20 टनल बन गई है और 5 टनल पर काम चल रहा है। 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और पहले 9 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं। और 5 टनल ये पूरी होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन बनियाल अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो 2 लेन पे शोल्डर जो 4 लेन पोलशर हम बना रहे हैं, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 2027 में पूरा होगा। इसमें भी 2 टनल अक्टूबर तक अवार्ड हो जाएगी और 97 किलोमीटर की सड़क बन गई है, 105 किलोमीटर का काम शुरू है। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। कॉरिडोर 3 श्रीनगर बारामुल्ला उरी 422 ये 4 लेन 2 लेन अभी है प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण, ये 3500 करोड़ का है, 92 किलोमीटर, 56% प्रोग्रेस हुआ है, जुलाई 2027 तक पूरा होगा। और श्रीनगर से उरी तक 24 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है, 68 किलोमीटर का काम जुलाई 2027 तक पूरा हो जाएगा। पट्टन तथा बारामूला में बाईपास बनाने का भी हमने निर्णय किया है जिसमें ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। सोपर में सेब मंडी वाले के लिए इससे सुविधा हो जाएगी, पहले 5.5 घंटे लगते थे अब 3.5 घंटे में हो जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा चौथा महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जम्मू अखनूर और पुंछ, ये भी 2 लेन प्योर शोल्डर लगभग 4 लेन का, ये 3,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 198 किलोमीटर, 80% प्रोग्रेस पूरा हुआ है। मैं कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट की घोषणा करता हूँ। कटरा श्रीनगर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ का, बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है दिल्ली से कटरा, इसमें जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं जिसमें 125 किलोमीटर का DPR बन रहा है। रामबन बलियाल लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाता है, इससे आवागमन सुधार रहेगा, रियासी कुलगाम क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। और कटरा से श्रीनगर आने में जो 5 घंटे 30 मिनट लगते थे वो 3

0: रफियाबाद कुपवाड़ा चौकी बल टंडाल टू लेन पेव शोल्डर 5,700 करोड़ का, ये 113 किलोमीटर मार्च 2027 तक अवार्ड हो जाएगा। इसमें सेब बागान वालों को भी इसका फायदा होगा। एक श्रीनगर काजीकुंड तथा स्टक सर्विस रोड एवं 9 अंडरपास का निर्माण 1100 करोड़, ये आज मंजूर की घोषणा मैं कर रहा हूँ। इसमें DPR रेडी है, जल्दी इसका काम शुरू होगा। श्रीनगर सोनबर्ग गुमरी तक ये 2 लेन पेव शोल्डर 4 लेन वाला 1500 करोड़ 57 किलोमीटर, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ और DPR जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इसके काम को हम शुरू करेंगे। सोनबर्ग और लद्दाख को जाने वाले पर्यटकों के लिए इसका फायदा होगा। अभी जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 45 मिनट में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि कश्मीर के ये सब रोड बनने से टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। सुरुंगकोट बफलियाज सुपेन दूधपत्री मागम 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग है 4,000 करोड़ का 170 किलोमीटर, इसको भी मैं मंजूरी घोषित कर रहा हूँ। इसका DPR दिसंबर तक बन जाएगा और तुरंत ये काम शुरू होगा। रजौरी पूंछ के आदिवासी क्षेत्र को श्रीनगर से कनेक्टिविटी सुधर जाएगी और 8 किलोमीटर की पीर की गली टनल का भी निर्माण किया जाएगा। सांबा बानसपुर उधमपुर ये 4 लेन चौड़ीकरण 7,500 करोड़ का 43 किलोमीटर का, इसका भी DPR बन रहा है, ये भी काम जल्दी शुरू होगा। जो पंजाब में आने वाले ट्रैफिक को जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, 1 घंटे का समय बचेगा। कठुआ में 4 लेन एलिवेटेड रोड 150 करोड़ का, इसको भी मंजूरी दे रहा हूँ। DPR सितंबर तक बन जाएगा और ये भी पूरा होगा। श्रीनगर रिंग रोड का 7,200 करोड़ का 104 किलोमीटर फेज वन का काम अक्टूबर में पूरा होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। जम्मू का रिंग रोड ये भी 4 लेन ग्रीनफील्ड 2800 करोड़ का फेज वन 58 किलोमीटर दिसंबर तक पूरा होगा और निश्चित रूप से फेज टू ग्रीनफील्ड रिंग रोड का पूर्वी भाग 3,700 करोड़ का, इसका काम भी हम इसी साल शुरू करेंगे। मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर में दिल्ली अमृतसर कटरा ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे ये 41,000 करोड़ का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर तक काफी काम इसका हो जाएगा। ये 670 किलोमीटर है, दिल्ली से कटरा 58 किलोमीटर की दूरी कम होगी और एक्सप्रेस वे कटरा को जम्मू को सांबा कठुआ पठानकोट अमृतसर मोहाली अम्बाला होकर दिल्ली जुड़ेगा, जिसमें केवल जम्मू कश्मीर में 11,500 करोड़ की लागत से 143 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का काम अगस्त तक पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर और विशेष रूप से जम्मू जाने के लिए कॉरिडोर और कटरा जाने के लिए बहुत आसानी से होगा। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि टनल में जम्मू और श्रीनगर के बीच 25 टनल में से 20 टनल बन गई है, 5 बन रही है। देश की आजादी के बाद 2013 तक देश में केवल 5 टनल का निर्माण कराया गया था, पर पिछले 11 वर्ष में 20,000 करोड़ की 54 टनल का अब निर्माण हुआ है। 1,12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 128 टनल का निर्माण कर रहे हैं, जो 2027-28 तक 40,000 करोड़ की लागत से 106 किलोमीटर लंबाई की 51 टनल बनाई जाएगी और 72,000 करोड़ की लागत से करीब 77 टनल के अब DPR भी बन रहे हैं और टनल में हम लोग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। ये सब जम्मू कश्मीर जो टनल निर्माण हो रही है उसमें विशेष रूप से ये सब काम पूरा करने के पीछे हम पड़े हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट काम है जिसकी घोषणा मैं आपको बताता हूँ। फरवरी 2028 तक जोजिला टनल का अप्रोच पूरा हो जाएगा। दीनदौल खुनी नाला तक टनल का निर्माण सितंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। अखनूर पुंज मार्ग पर सुंगल टनल का निर्माण जुलाई 26 तक पूरा होगा। अखनूर पुंज मार्ग और भीम बरगली टनल का निर्माण जुलाई 2027 तक पूरा होगा। सिंहपुरा वायलू में टनल का काम 3300 करोड़ का अक्टूबर 2026 तक इसका टेंडर हो जाएगा। शुद्ध महाजन के पास टनल का निर्माण 2300 करोड़ का, ये भी 2026 तक इसका टेंडर हो जाएगा।
1: तकरीबी वसला जोजिला मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान, लद्दाख रामवांग रियूली अर्गेसी कौंसल करगिली गुबा डॉक्टर जाफर आखोन, डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचो, दुनमासी मेंबर पार्लियामेंट तुपसंत सेवंग, दुनमासी ले CEC एडवोकेट टशी ग्यालसन, सी लद्दाखी BJP वाइस चेयरमैन हाजी इनायत अली, मकमी उन्ना सिविली आला ऑफिसर हन, NHIDCLE डायरेक्टर हन खाखुर हन सक जुक्सियोपिन। दी टनल पुल दंचस्पे का करगिल जिले दोनों द्रासला लेकिन थका बासों दी वक्सला अंजुमन जमेत उलमा इसन आशरिया करगिली चोसना प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्ट्रोलिका शेख इब्राहिम खलीली दुना सज्जाद हुसैन करगिलिस दी टनल पो गांगिया छा थोचा

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जन छा ता कंज्यूम चो ना ता बॉडी फैटिक मान ले चेना छा एक तो ब्लड प्रेशर तो मता खतरा ही ना नो गले मगर छा करम को कार्सिनोजन ना नो गले तो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट जान नो गले तो फिर छा मबो इमिनेंट चल
1: सब एरेज माने जलता दमो मोस्ट ब्लड प्रेशर इतिया नो को लाज़ मपो जैसे कि मित जोक छा द कानून अति मीमा द फंतो शॉक बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू
2: दरे सख पाय अंतस प्रोग्राम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि

0: बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तीनों कॉलेज में
2: फिक्र ना कर,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है?
4: क्या हुआ?
2: फीस का टेंशन।
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ना, तो रास्ता क्लियर। बैंक से हसबे जरूरत स्टूडेंट एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाएगा और 4 लाख तक नो कोलेटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: RBI कहता है
6: करो नहीं शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: जंगी बिजनेस उन्नत के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंगलन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उनसा पिल्ले पीस कप्स मांगमो धरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनिका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से योत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
9: 8700014242। सुनो ना।
8: हाँ?
9: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
9: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
9: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
9: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
9: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
9: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अस्सलाम वालेकुम आकाशवाणी करगिली केना यम फेसबुक प्रोग्राम चिखुरे ग सैयद काजिम हुसैनी यंता नयान सिरची खतुक छेनियोत ने जुना सलाम पुफरत मुचन सोशी याले प्रोग्राम यनखनी अछेनमुक कफोनन यंता मुजिनुतंग अचस आकाशवाणी कर

इस मेलुस यांग खोंगा जितना हो सके सबक तामी फ्रालुक्स बेन योते इन सुख यांग निस्पा रेसी यंताजे संग स्किल के फोकस तांस इन जर बना यानी स्किल पुंगा ने यारा चाम से सच इन जर चेस पुंगा ने यारा तांस पर तंग दां दिरिंगा ने यारा अनइम्प्लॉयड ज्यादा बीएन चियो तंग चाजर नांगा ने यारा गा हुकूमत इस करोड़ों आबादिया रोजगार तांगे

0: nadang di ring ngane ranga electrician mana legi na dul bet pi business shikinang chan di skill pungane la yod nakatun ngane ri nang kune nu dang di ngane ri nang kune nu bijli met pin nang ching ngane ra thoma metang di bijli met pin nang pungane ra mathong mana di bijli fitting be filang ngane ra mir gospa tang bijli fitting be fila saman ngatar gospa tang ni di business pu chho business shinang dunang ngane res sambatang mar gushaina ya dumin ma ngane re carpenter nga tespera ta na ga na chi ya nu tsa shi chona almari chona ka to ya dumin ma yang kasmi ga la shi na ka to adun ya nu ngane ra shinkhan pa zare ngane ra carpenter ma na gos pa chatang chana duni ka ngane re focus ka tu ta na ngane ra berozgar lu shaminang ni ngane ra ngane re skill pu chong sang ngane re speni khong ma ngin chaina ngane ra gos pa de ta ki ngane re sambatang cha jitna ho sake hukumat is dinu ka chori scheme pu ngane re file chose ho this scheme ni kana ngane res fan kelen mi fralux bacha yang ngembo embo ngane re jitna ho sake ngane ri lakshya sunika anta se lakshya chabi ngane res fralux bacha taiki ngane ri mitseo rigelba mitsek chok kasani ngas ni spiral lege ni kemich chaduk ngas ngari spiral dege jakse mem zebun supervisor ICDS kargili kana enta sukpa ngata ICDS sin naljons ga sub scheme ka tuyo mat ya ngata ICDS pu khran chin zer chas pu duna ade naljons ut khani sub scheme ne anu ngata ga sub scheme ka tuyo mat zer chas pi score lain dan sup pa facebook trisuk fru chuke trisula sna bazat
1: shwani kargil so pek diring ICDS office kargil lepsyo dikanga chembus pera ta ming na mam zebun nisa supervisor ICDS kargil nga chembus chukso chana atas memikana yang tak suka ngata ICDS naljons pramachi kani scheme ni skola hagori lepchuk salus bet sabas nalla assalamu alaikum ma'am
2: alaikum salam
1: akashwani kargili team shos na era oju string ma ju yere zir rin chan tu sen tu ta sa era dik kas kyote yere zir rin chan kas pon sel mi ne era dik kyo ju re khachi ngate program ba sang ena ju gawang ngate ICDS skola ngata me mas skola hago ta sa ena ju ICDS skola yere kafi mol spinang chana yang pherachin ngate di program study ka ngata me mas skola ICDS pu chin jarchas pu ngon chup ming na ngata yang sirchigara jawabet pa ju yere ngata ICDS skola di ICDS pu khoran chin du ngati phila ga jo fan ka chan chin yang ngatanga choga din ngen fan kelen mo shen din yang ngatanga chok kasum skin ka tu ma jarchas pu yere ngata me mas skola ngon chu shir ka sa bakhshis
2: bakhshis sir yaran di kas kyote ngachi kena ICDS score la mimas un chuk pa risofo chik pi phila तो सबसे पहला ना गंता आईसीडीएस पुचिन जरे गंती मीमा सुन लदी बारे तखसपा काम रे दो और गंती पब्लिक इज दी का गंता इंटरेस्ट पु काम रे ता मत सोरन दु गया गंती आईसीडीएस स्कीम स इसको लखो खाश पतेक मछा इन सुदी फिल गंतेस गंती स्टोरी का खो आदी का हगो ता मी कोशिश बेत सबसे पहला आईसीडीएस जरबना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम इन सुदी आईसीडीएस मतलब पु चाइल्ड डेवलपमेंट जरबना दी स्कीम पु में लिंगंती फ्रूम सगई एरिया से फिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शो से इंसुक और दू सबसे पुराना स्कीम चा इंसुक गाओ 1975 कना दिल तक डूले नियो तिंसु दी स्कीम पु दी स्कीम पु स्ट्रे मकसद पुखरन ओदे सनदिया इन मिंसुक किंगंती फ्रून यंग हिंदुस्तानी फ्रून ओदे टाइम पिका गंता फ्रून ला जानी कमी छाना खो माल न्यूट्रिशन सो मिंसुक माल न्यूट्रिशन बीमारी छाना माल न्यूट्रिशन जबना इम्बेलेंस न्यूट्रिशन छाखों पु बराबर फूने मछा नखो माल न्यूट्रिशन चोक्स बीमारी छाना दिया यम्बो यम्बो स्टंटिंग जबाना गो छुमसे लुसिया इनेमिया अक्षा की कमी दू चोक्स गंता इशू का तो प्रॉब्लम का तो गंती फ्रून यंग खोपांगम अमान यंग थों मना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनली दिस स्कीम पुचे मकसद पुखरा दून सखातम बे फिला चुस पिन सुगया 1975 कनाडिल थिक दखसन दिस स्कीम पुलायंग दोबारा डेमो बसेमी सुपा दिस स्कीम पुलेप चिक पे फिला दियां यंग जान चिक मल सोखशिक्यों चुक पे फिला दिस स्कीम मिंग पु दखसन यंग चेंज सोसे दखसा दुला सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जेरिंग अंतंगा छोर बछा दिया दिस स्कीम पु अंतंगा यंग और डेमो बसेमी सुपा लेप चुक पे फिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिन यारगेस का तो क्यों पिन सुक गे तहत गंतेस दिस स्कीम पु ज्यादा से ज्यादा म्यून सुक पा दी फनखेन लेप चुक पे फिला जान आंदोलन जरे अभियान का तो गन या पोषण अभियान जरे उत्सुक अभियान का तो स्टार्ट बस यो गे तहत गंतेस ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन गंती म्यून सक ज्यादा से ज्यादा पता छा चुक पे फिला दिस स्कीम स्कोर ला

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: میرم وی وکاچ از آکاشوانی کارگل نظرینو تو وقت سپو خبری تو سنسو کسطا پرگی خبرون لانین مزد

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जय हिंद। फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामीन की खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामीन संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म जीत से गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: अभी आपने दिल्ली 6 फिल्म में जावेद अली और कैलाश खेर को सुना। बोल थे प्रसन्न जोशी के और संगीतकार नदीम श्रवण। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गीत सिर्फ तुम फिल्म से जसपिंदर नेरोला और साथियों की आवाज में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

अजीज और अनुराधा पोटवाल की आवाज में। इस गीत को कलमबंद किया है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित

0: करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सब

0: कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन

0: के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियु पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai, jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna, ye dikhata hai कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए हैं। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and

0: form with a 21-12, 22-20 win over world number 11 Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advance to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Zameer Razvi se khabrein suniye. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तिसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा है, न कि सियासी।

0: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4398 दिन तक फरायज अंजाम दिए थे। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हुसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
0: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और आवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
0: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के आवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिस्किन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा वजीर आजम मोदी ने बरसों से भारत की इक्तसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार

0: यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
1: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
0: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप कायम किए गए हैं जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। पीएम सेतु स्कीम के तहत 1,000 आईआईटी की जदीद कार्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
2: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम पीएलआई के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरखास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर का अंदाजा है। मंजूरशुदा दरखास्त गुजार पीएलआई स्कीम के आम शोबों से ताल्लुक रखते हैं जिनमें मैनमेड फाइबर, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मुकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमू तौर पर 770 करोड़ रुपए के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निजाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में